धन्यवाद धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि यीशु के लहू में जो ताकत है जिसे

तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।

कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। यस प्रभु, तेरा लहू कीमती है प्रभु, तेरा लहू, तेरे लहू में हमें ताकत मिलती, तेरे लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते प्रभु, तेरे में, तेरे लहू से हमें शांति मिलती, तेरे लहू में हमें चंगाई मिलती प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद।

मुझको बना, मुझको सजा। यस प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, हमारा जीवन तेरे हाथों में प्रभु, हम मांगते हैं यस प्रभु। यस प्रभु, तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारी चट्टान है प्रभु,

प्रभु, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरी चट्टान है प्रभु। यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। यस प्रभु, तू हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, ओरा बारा शिकारा बारा चंद।

एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। इस प्रभु हमारे पाप, तेरे पाप हम धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा को, तेरे कोशिश के बदले हमें क्या मिला प्रभु? हमने तुझसे दूर हो गए, तूने हमारा भाग्य अच्छा रखा प्रभु, सब कुछ तूने हमारे लिए कुर्बान किया। इस प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद कर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद तेरी स्तुति के लिए। यस राजा, धन्यवाद अद्भुत कामों के लिए, धन्यवाद तेरे करुणा के लिए, धन्यवाद

आराधना तुझसे, प्रभु जो आराधना तुझसे, आराधना तुझसे यीशु, आराधना तुझसे, हालेलुया।

तू है वो सनातन शरण मेरी। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं, मेरा आसरा केवल यीशु ही है, वो सनातन का शरण लेना है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है।

0: प्रभु, तू सनातन का परमेश्वर है प्रभु, तू इसहाक का प्रभु है, याकूब का परमेश्वर है। मनुष्य पर आसरा नहीं है, लेकिन हमारा मेरा निश्चय यही है कि तू ही मेरा आश्रय है, केवल यीशु। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मुझे संकट के समय तू मुझे पुकारता है। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे अनुग्रह से मैं भर दे, तेरी शांति से भर दे प्रभु, मांगते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, तू हमारा आसरा है इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अद्भुत है। यस प्रभु, धन्यवाद करते, तेरे लहू में ताकत है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरा लहू हमें संभालते, हम तुझ पर प्रभु विश्वास करते हैं। यस प्रभु, हम मांगते हैं हमारे लोगों को तेरे सामने लेकर आते हैं, जितने भी बीमार है उन्हें तू चंगा कर। तूने मेरी को कहा तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा देखेगी प्रभु। आज हम मांगते, लाजरस को तूने मरे में से जीवन दिया प्रभु, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, तेरे राज्य में हमें बढ़ा, पवित्र आत्मा हमारा तेरा अभिषेक से हमें भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे। हमारे अंदर बुराई दुष्टाई, चाहे कोई भी हमें हमारे लिए बुरा बोलता होगा प्रभु, लेकिन हम तुझसे आशा रखते, हम तुझसे विनंती करते, हमारे लोगों को बचा, हमारे परिवार को बचा, हमारे बच्चों को बचा प्रभु, हमारे नाती पोतों को बचा, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। सभी के जीवन में कार्य कर, सभी के विचारों में कार्य कर, और भागी प्रभु तेरे राज्य के सहभागिता होने के लिए हमारी मदद कर, तेरे राज्य में बढ़ोतरी से काम करने वाले बन जाए, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। आज हम मांगते एक मन होकर, हमारे सारे कलेशों का ताबा तेरे हाथ में देते, तू मदद कर प्रभु, जितने बीमार पड़े हैं उन्हें सभी का इलाज सही ढंग से होने के लिए मदद कर, और तेरे विश्वास के वचन के कर प्रभु, आगे बढ़ने के लिए हर एक को मदद कर प्रभु। हर कलेशा के अंदर तेरा विश्वास की आत्मा फैलने दे प्रभु, और अंधकार के शक्ति को हम बांधते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर प्रभु, तेरे लोग समय ढाप दे। हमने तुझ पर आशा रखी प्रभु, हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम तुझ पर विश्वास करते तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, हमें कोई गलत रास्ते पे लेके नहीं जा सकता है प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। हमारे दोनों बहनों को भी तेरे हाथ में देते हैं, मेरी बहन सुजाता का, सुलभा का, पता नहीं प्रभु काफी दिन से सुजाता ने मेरे से बात नहीं की, मुझे मेरे मन में कई सवाल आ रहे, लेकिन वो सब कुछ तेरे हाथ में देते। तू समय अनुसार, तेरे बेड़े अनुसार तो हमसे बात करेगा, ऐसा हम विश्वास करते प्रभु। सहायता कर, मदद कर प्रभु। उसी तरह मैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में, क्या हम खाते, क्या पीते, क्या उठते, कैसे बैठते, कैसे, ये सारा प्रभु हमें मदद कर, क्योंकि तू ही तो है प्रभु, हमें संभल कर सकता है प्रभु। हमारी आशा तुझ पर है प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता करना, मदद करना प्रभु। यस प्रभु, धन्यवाद करते, एक मन हो करते, चरणों पे आते, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, सहायता कर, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड अपनी में सभी बहन भाइयों का स्वागत करते हैं, उनके जीवन में कार्य कर, हर परिस्थिति है जो बिगड़ी है उन्हें सही कर दे प्रभु, और तेरे राज्य में बढ़ोतरी होने के लिए मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, रात को जो भी बहती है प्रार्थना करिए, उन सभी को याद करते प्रभु, आशीर्वाद कर, मदद कर प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में तो कार्य कर, हर एक के मन विचारों को तो बदल दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यस प्रभु सहायता कर, यस प्रभु धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते, आज की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। यस प्रभु सहायता कर, मदद कर। यस प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उरा बरा शिकरा बरा शंदरा बरा, धन्यवाद करते प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय वचन की तरफ हमारी मदद कर, रक्षा कर, वचन अनुसार से बात कर प्रभु। आइए हम आज वचन देखेंगे, जॉन चैप्टर 20 का उसका हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे। आज हमारा विषय है, प्रभु ने मेरी को बोला तो मुझ पर विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा देखेगी, ऐसा वचन कहते। लेकिन यहाँ आज और भी वचन 20 का 16 वचन कहते हैं, जीसस सेड टू और मेरी, प्रभु मेरी से क्या बात कर रहा है, किस काम से प्रभु उसको कॉलिंग कर रहा है। बोलते मेरी शीप मेरा आवाज सुनती है। प्रभु आज हमें सभी को आवाज दे रहा है और उसकी आवाज को हम सुने। आज प्रभु हमें कौन सी आवाज सुनाना चाहता है, आइए पढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम निकलते हैं जॉन चैप्टर 20 का 16। हालेलुया लॉर्ड धन्यवाद। जॉन चैप्टर 20 का 16वां वचन पढ़ते हैं, उसमें देखो, यीशु ने उससे कहा, मरियम उसे पीछे मुड़कर बोलती है, इब्रानी ने कहा रब्बुनी, अर्थात ए गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर जाता हूँ। देखो यह दो बात यीशु मरियम से कह रहा है। पहली तो बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मरियम को कहा मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे के। पहले तो बोलता है कि तू मुझे मत छू क्योंकि मैंने अपने पिता से नहीं मिला हूं, और बाकी लोगों को भी जाके कह दे कि मैं अपने पिता अब तुम्हारे पिता अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। और मरियम मगदलीन सभी को जाके बताती भी है, और उसी में हम पढ़ेंगे 18वां वचन भी। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। देखो प्रभु ने उसको कुछ काम सौंपा था करने के लिए, वो कर रही है। आज प्रभु आपसे और हमसे भी कह रहा है कुछ बातें, जो प्रभु कहता है उसे हमें मानना है। प्रभु ने मरियम को बोला, जा मैं अभी तक तुझे तुझसे नहीं मिल सकता हूं क्योंकि मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूं। इसीलिए आज परमेश्वर कह रहा है, इधर उसने ये बातें कही, चेलों को एक मैसेज भेजा। आज प्रभु यीशु यहां आकर हमें भी मैसेज दे रहा है कि पिता की इच्छा क्या है वो पूरी करो। यशायाह का 43 का पहला वचन पढ़ते हैं, देखो क्या कहते, ए इसराइल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सुजनहार अब यो कहता है, इधर एजाया से भी कुछ बातें कर रहा है, कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इधर इसराइल से परमेश्वर इसराइल के लिए बातें कर रहा है, तेरा रचने वाला कौन है, हमारा छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। आज वो आपसे और हमसे यही कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैंने तुम सबको छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है। और इधर मरियम से भी प्रभु क्या बात कर रहा है, जाके अपने चेलों को बोल दे कि प्रभु यीशु अपने पिता के पास जाकर आ रहा है। ये मैसेज मरियम के द्वारा बोलता है। इधर इधर इसराइल के लिए परमेश्वर बातें कर रहा है कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सुजनहार परमेश्वर हमें हर एक का नाम लेकर हमें बुलाया, हर एक को एक नाम लेकर बुलाया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो छुड़ाना चाहता है, वो हमें हर बंधन से छुड़ाना चाहता है। सिमम जॉन का 10वां अध्याय से 3 और 4 पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। दस का 3 और 4 देखो, 3 और 4 क्या कह रहे हैं। उसके लिए द्वार पाल, मैं तुमसे 10 का 1 से 3 और 1 से 4 तक पढ़ेंगे। हम तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार पे भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे से चढ़ जाता है, वो जो तीसरा सॉरी परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे वो चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि उसका शब्द पहचानती है। वैसे ही आज परमेश्वर यहाँ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए द्वार खोल दिया है परमेश्वर ने, उसका हमें शब्द सुनना है। जब परमेश्वर अपने दरवाजे पे नॉक करता है तो वो आकर हमारे साथ भोजन करना चाहता है। लेकिन इधर एक बात और बता रहा है कि प्रभु का हमें आवाज सुनना है, वो हमारे द्वार पर, हमारा उसने हमारे लिए द्वार तो खोला है, क्या प्रभु का आवाज हम सुन रहे हैं कि दुनिया का आवाज सुन रहे हैं। बाहर ले जाता है और भेड़ों को, सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे उसके भेड़े उसके पीछे लेती है क्योंकि प्रभु अपने बच्चे अपने स्वामी की आवाज सुन सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर की आवाज हम सुन सकते हैं, लेकिन आप सुनने के लिए उसने हमारे लिए द्वार तो खोला है, क्या हमने अपने कान खोले हैं कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए। इजहाय से भी प्रभु आज यही बात कर रहे हैं, उसको बोलता है मैं छुड़ाने वाला हूँ मत डर। आज परमेश्वर आपको और हमें यही बात प्रभु समझाना चाहते हैं। इसराइल इजहाय से प्रभु बात कर रहे हैं, 49:16 का वचन हम जब पढ़ते तो उसमें भी प्रभु वही बात कह रहे हैं। 49:16 का वचन जब हम पढ़, देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शरपाण सदैव दृष्टि के सामने बनी रहती। हमने आज 3 बातें देखी। पहले तो मरियम से प्रभु बात कर रहा है, कह रहा है अपने चेलों को जाके बोल दे कि मैं अपने पिता के मिलकर फिर तुम्हें मिलूंगा। उधर इसराइल से प्रभु बात कर रहा है इसराइल लोगों के लिए कि प्रभु हमें छुड़ाने वाला हमारे बंधन को निकालने वाला परमेश्वर, वो हमें आवाज देकर, उसने हर एक का नाम लेकर हमें बुलाया। और प्रभु तीसरी बात हमें ये बता रहे, उसने हमारे लिए द्वार तो खोल दिए। क्या परमेश्वर अपने भेड़ों की आवाज सुनता है, और भेड़ों क्या करती है ये देखिए परमेश्वर को पता है। आज हम क्या कर रहे, क्या हम सच्ची में परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? परमेश्वर ने अपना नाम अपने हथेली पर हम आपका और हमारा लिखा गया है। क्या हम अभी भी प्रभु को दूर फेंक रहे? क्या उसके उसकी चीजों को हम याद नहीं कर रहे? आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है सिखाने के लिए। हर दिन प्रभु हमें याद दिलाता है, उसके कार्य को याद दिलाता है हमें। हम दुनिया में खो न जाए, भटक न जाए, लेकिन प्रभु की आवाज सुन पाए। आइए हम आंखें बंद करते प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु तो हमें छुड़ाना चाहता है, हमारे बंधन से हमें आजाद करना चाहता है। तूने हमारे लिए द्वार खोला प्रभु, ताकि हम तुझे तेरी आवाज सुन सके। तूने मरियम से जो बातें कही प्रभु, वो आज तो हमें भी कह रहा है प्रभु, कि हम तेरी तेरी बातें जाकर दुनिया को बताए कि प्रभु आ रहा है हम सबको लेने के लिए। वो पिता के पास जाकर हमें लेने आ रहा है। धन्यवाद करते राजा इस सुंदर वचन के लिए। हमें तैयार कर प्रभु, हमें तुझे पूरी तरह से समझने के लिए मदद कर, हमें आत्मिक ज्ञान बुद्धि से भर दे, तेरी आवाज को हम सुन पाए। हम हमारे कान और हृदय न बंद करें प्रभु, लेकिन तेरी महिमा के लिए मैं खड़ा कर, तेरे राज्य के लिए खड़ा कर, तेरा सुसमाचार हम जगह जगह फैलना पाए, तेरी आवाज सबको सुनाने के लिए हर एक के कान खोल दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, हमारे परिवार को, हमारे कलिशाओं को, हमारे आजू बाजू लोगों के जीवन में भी कार्य कर प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज कितने लोग भटके हुए, बुराई में पड़े हुए, उनकी तरफ उन्हें तू मार्गदर्शन कर, और इस बंधन से, इस बुराई से सभी को आजाद कर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
1: प्रेज द लॉर्ड सुमिता,
0: प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। हाउ इज योर हस्बैंड?
0: ओके, टुडे इज लिटिल बिट ओके, स्टिल पेनिंग, पर ओके, ऑल डायरेक्टली आई एम पुटिंग प्रेसिंग ऑयल आल्सो विथ हिम।
1: ओके,
0: यस
1: लेट्स लेट्स वी प्रे नो।
0: यस
1: हेवनली फादर, फादर गॉड, Mighty God, Father, we come to your presence because you are our Father, you are our leader, you are our comfort, you are our answer, you are our deliverance, O God. You are everything for your people, for your children. Father God, thank you for this wonderful day, wonderful night, wonderful prayer, and your presence, O God. Lord, I thank you for Sumedha. Whenever she have time, Lord, she come to your presence. I think she run to your presence, oh God, to pray, to praise, to share the word of you. Thank you for that. Lord, thank you that you choose your daughter. You keep her in Paris, but using all over the world through SPM Gospel International Ministry. Father, bless her abundantly. Whatever Lord, the heart desire of her, Lord, fulfill it. That's why King David said, Psalm 145, the last words say, Lord God, Lord, whoever fear of you, You fulfill the desire of the heart. Yes, you fulfill her desire, whatever the desire in her heart about her husband, about her family, oh God, about ministry, about the relatives, friends, whatever she's crying to you, Lord. Answer all her prayers and bless her. Bless her husband, heal him completely, take away the pain from the body. Lord, take away the pain from his body. Let him praise you. Let him glorify you, Father Lord. And all the prayer requests, Lord, we pray for Brother Olivier's brother and the Madam Christine and the Jonathan, his wife, daughter, and the problem, Lord, for the salvation, everything, Lord, you answer, oh God. You are the God Almighty. You are the prayer answering God. Answer all the prayer requests of Smita. Bless her abundantly. Lord, bless her abundantly. When she come next time, let her glorify your name. Praise you, glorify you. I hand over to your hand. In Jesus' name we prayed. Amen. Amen. Thank you, Sister Smita.
0: God bless you, sister.
1: See you tomorrow.
0: Okay. God bless you. Bye. Good night.
1: Good night. Bye.